साथ लड्डे तिन नाठिया भीड़ कणी दरियाओ साचो रंग रंगावलो सखी हमारो कंत सच वे छोड़ा नाथी है सो सह रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे स्यो ने हो सा तन कंत पछाणिया सुख सुती निस डेह पतन कुके पातनी वंझो त्रुक विलाड़ पाप पंदव पवंदड़े दिठ मैं सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिनी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा ना दिसै कोय नानक होमै मारिए सच्चे जेड़ा सोए मारू महला पहला ना जाना मूर्ख है कोई ना जाना सियाना सदा साहिब कह रंगे राता आंदिन नाम बखाना बाबा मूर्ख हा नावे बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ मूर्ख सियाना एक है एक जोत दोए नाओ मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ गुर द्वारे ना उपाये बिन सतगुर पल्ले ना पाए सतगुर कह भाणै मन वसै ता अहनस रह।

चौपड़ एका सारी जग चतुर सियाणा भरम भुलाना नाओ पंडित पढ़ेगा वारी नाओ विसार है वेद संभाले बिख भूले लेखारी कलर खेती तरवर कंठे बागा पहरे कजल चरे एहो संसार तिसे की कोठी जो पैसे सो गर्भ जरे रयत राजे कहा सबाए दुहु अंतर सो जासी कहत नानक गुरु सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवा अष्टपदी ओंकार सतगुर प्रसाद जिसनों प्रेम मन वसाए सच सच्चा शब्द सहज।

जियो रहाओ देव दृष्ट जागे परम चुकाए हुकम प्रसाद परम पद पाए सो जोगी एह जुगत पछाणे गुर कै सब बिचारी जियो संजोगी धन पेर मेला होवे गुरमत विचो दुरमत खोवे रंग स्यो नित रलिया माणे अपने कंत प्यारी जियो सतगुर बाझो वैद ना कोई आपे आप निरंजन सोई सतगुर मिलिए मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा भुख गवाए आपन लिया किछु ना पाइए कर कृपा कल धारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा।

धर्म आहे। मृत नरक स्थान बिखड़े बिख ना पोहता है। रिद सिद्ध नव निध जाके अमृता परवाह। आद अंत मद पूरन ऊच गम अगहा। सिद्ध साधिक देव मुंजन वेद करे विचार। सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार। अंत पारावार अनेक पराशत मिटे खिन मह। हृदय जप भगवान पावना ते महा पावन। कोट दान इसनान बल बुद्ध सुध प्राण सर्बस संतना की रास। बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास। मारू महला पंजवा शस्त्र तीखण काट डार्यो। मन ना कीनो रोस काज उआ को ले सवार्यो। तिल ना दीनो दोस मन मेरे राम रो नित नीत। दयाल देव कृपाल गोबिंद सुन संतना की रीत। रहाओ चरण तले उगाहे बैस्यो। श्रम ना रहो शरीर महासागर नह व्यापे। किने उतरियो तीर चंदन अपर कपूर लेपन। तिस संगे नहीं प्रीत बेस्टा मूत्र खोद। तिल तिल मानना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत सलंगन सब सुख छत्र मित्र सत्र। न कछु जाने सर्व जिय समत। कार प्रगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश। पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन ना पयो बिखाद। सीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान। जहा सा किच तहा लाग्यो तिल ना संका मान। सुभाय अभय जो नित्य आवे सीत ताका जाए। आप पर का कछु ना जाने साधी सहज सुभाय। चरण शरण सनाथे हो मन रंग राते लाल। गोपाल गुण नित गाओ नानक भय प्रभ कृपाल।

आराधना आराधनिका हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागनिका काम क्रोध लोभ त्यागना मागना मागननिका हर हर जस गुर ते मांगना जागना जागनिका हर कीर्तन में जागना लागना लागननिका गुरचरणी मन लागना एह बिद तिसे प्राप्ते जाके मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किसनिका जो प्रभ की सरनागना मारू महला पंजवा आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजे पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निध रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन भावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवरना सूझे जावना मोहे निर्गुण को कोय ना राखे संता संग समावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना मारू महला पांजवा जीवन

नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा त्रिपतीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नागे नहीं थीवना भोगना मन मधे हर रस संत संग मह लीवना बिन तागे बिन सुयानी मन हर भगती संग सीवना मात्या हर रस मह राते तिस बहुड़ना कबू औखीवना मिलो तिस सर्ब निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना सुख नानक संतन की सेवा चरण संत धोए पीवना मारू महला पंजवा कर अठवा अंजुलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो फिरे भ्रमत प्रमंता दुहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए ग्रह राज में नरक उदास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोधा देही में जो रह अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिए जागत सूता परम बिगुता बिन गुर मुक्त ना होइए मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहालिए कर्म करैता बंधा नह करैता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हियाली है संसार मह सहसा व्यापे अकथ कथा गोचर नहीं जापे जिसे बुझाए सोई बुझे ओहो बालक बागी पालिए छोड़ बह तो छूटे नाही जो संचय तो पौन मन माही इस ही मह जिसकी पत राखे तिस साधु चौर टालिए जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागे तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मन बुझ हुक्म दुरमत जालिए जित जित लाभे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना नानक के पूरन सुख दाते तू देहता नाम संभालिए मारू महला पंजवा बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया पाप करे दड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सृजन हारे लेख मंगे लेखा मंगे भाणिया संग ना कोई पैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वजेसा करण करीना जा तो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लै खुश खुश लैदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया।

आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी आपे पेड़ बाधी जग खेले आपे कीमत पाई है आपे पवर।

अनाहद अंदन काट काट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो। आपे किसी कस बख्शे, आपे दे लै पाई है। आपे तनख आपे सरबाणा, आपे सुघड़ स्वरूप से आना। कहता बक्ता सुनता सोही, आपे बणत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी धरती माता। रैन दिनस दोए दाई, दाया जग खेले खेलाई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला। सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम संजोगी। आपे वे बाणी निरंकारी, निरभौ ताड़ी लाई है। खाणी बाणी तुझे समाणी, जो दिसे सब आवण जानी। सेई सहा सच्चे वापारी, सतगुर बूझ बुझाई है। शब्द बुझाए सतगुर पूरा, सर्व कला साचे पर पूरा। अफरियो वे पर वह सदा, तू ना तिस तिल ना तमाई है। काल बिकाल पय देवाने, शब्द सहज रस अंतर माने। आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भक्त पाए मन पाई है। आप निरालम गुर गम ज्ञाना, जो दिसे तुझ माहे समाना। नानक नीच भिख्या दर, जाचे मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे धरती धौल आकाशंग। आपे साचे गुर गुण परगासंग, जति सती संतोखी। आपे आपे कार कमाई है, जिस करना सो कर कर वेख है। कोय ना मेठे साचे लेख है, आपे करे कराए। आपे आपे दे वड़ियाई है। पंच चोर चंचल चित चाल है, कार पार कर जो है। कर नहीं पाल है, काया नगर टह टह। तेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बुझे त्रिपवन सूझे, मनता मार मन स्यो लूझे। जो तुध से भे से तुध ही जे है, निरपौन बाल सखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे जोत स्वरूपी बाला। जटा विक्त बिकराल स्वरूपी, रूप ना रेख्या काई है। देव कते भी भेद न जाता, ना तिस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल उपाए समाए, अलख न लखना जाई है। कर कर थाकी मीत कनेरे, कोय न काटे अवगण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सबना, सिर पाए मिले पाओ जाई है। भूले चूके मार्ग पावे, आप भुलाए तू है समझावे। दिन ना वै मैं अवर ना दिसे,

तावत राखे ठाकर हाया कमल बिगास हरे। सर सुभर आतम राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में है आए, क्यों रही है चलना पर थाए। सच्चा अमर सच्चे अमरा पुरुष सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सुबाया जिन सिरिया तिन तंदे लाया। सच्चे ऊपर अवर न दिसे साचे कीमत पाई है, ऐठे गोई लड़ा दिन चारे खेल तमाशा तंदू कारे। बाजी खेल गए बाजी घर जो निस सुपने पख लाई है, तिन को तख्त मिली वड़ियाई। निरपो मन वस्या लेवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिपवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साथ मिले सुख पावा। साचे साचे तख्त वड़ाई, हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीय सहसा जिये, क्यों सुख पावे दुए तिये। निर्मल एक निरंजन दाता, गुर पूरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहया मन राता। तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल ना काई है। जीव रसायन साचे राती, हर प्रभ रंगी पौना पराती। श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना। दुख सुख देह तू है मन पावे, तुझी स्यो बन आई है। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तुद सा लाही। नानक नाम रते बैरागी, निज घर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला आद जुगाद अपर अपारे, आद निरंजन खसम हमारे। साचे जोग जुगत विचारी, साचे ताड़ी लाई हे। केतड़िया जुग तंदुकार, ताड़ी लाई सिरजन हार। सच नाम सची वड़ियाई, साचे तख्त वड़ाई है। सात जुग सत संतोख शरीरा, सत सत वरत गहिर गंभीरा। सच्चा साहिब सच परख, साचे हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर

अरग पचै पचाई है, सोढ़ो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दझे साथ न आई, मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है, सोढ़ो काम क्रोध बुरियाई, हमें तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण पर होता उब्रो, यो तरिय पव जल पाई है, आगे बिमल नदी अगन बिख चेलात, तिथे अवर ना कोई जियो इकेला, पढ़ अगन सागर दे लहरी, पढ़ दझे मन मुखताई है, गुर पह मुक्त दान दे पाने, जिन पाया सोई बिद जाने, गुर पह मुक्त दान दे पाने, जिन पाया सोई बिद जाने, जिन पाया तिन पूछो भाई, सुख सतगुर सेव कमाई है, गुरबिन उर्ज मरे बेकारा, जम सिर मारे करे खुआरा, बाधे मुक्त नहीं नर निंदक डूबे निंद पराई है, बोलो साच पछाणो अंदर दूर नहीं।

लाई, अपर अपार तंदुकार निरालम बैठा ना, तद तंद पसारा है जुग छत्ती तिने वरताए, जो तिस पाणा तिवे चलाए, तिसे शरीख ना दिसे कोई आपे, अपर अपारा हे गुप्ते बूझो जुग तुआरे, घट घट वरत उदर मझारे, जुग जुग एकाएकी वरत कोई बूझे गुर विचारा हे, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, पौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द ध्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मझारा है, चार पदार्थ ले जगे आया, शिव शक्ति घर वासा पाया, एक विसारे ता पिड़हारे, अंधुले नाम विसारा है, बालक मरे बालक की लीला कह कह।

बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है। आप विचार न रोवे कोई सतगुर मिले तब सोझी होई। बिन गुर वज्र कपाट न खुले शब्द मिले निस्तारा है। बिरद भया तन छीजे देही राम ना जपई अंत स्नेही। नाम विसार

है सिर मारा हे खाजे पैज है रली करी जय बिन अब भक्ति बाद मरी जय सर अफसर की सार ना जाने मर मार सर अफसर की सार ना जाने जम मारे क्या चारा हे परवृति निर्वृत पछाण गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आख ना चले सच खरा सचियारा हे साठ बिना दर सिजे न कोई साठ शब्द पैजे पत होई आपे बख्श ले तिस भावे हाँ मैं गर्भ निवारा हे गुर कृपा ते हुक्म पछाणे जुग है जुगंतर की बिद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा हे मारू महला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्ब जिया ते प्रतिपाल समाले सो अंतर दाना बीना हे गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर मह रतन लाल बहु सारे मोती माणक हीरा हर जस गावत मन तन पीना हे हर अगम अगाह अगाध निराला हर अंत ना पाइये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल लय रंग लीना हे सतगुर बाजो मुक्त किने ही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगह मुक्त करे कर कृपा बख्शे अवगुण की नाहे सतगुर दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रस पाए जम जागात नहीं कर लागे जिस अगन बुझी ना थर सीना है काया हंस प्रीत बहो तारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी है नस भोगे चोज बिनोदी उन चलते मता ना कीना हे सृष्टु पाए रहे प्रभ छाजे पौन पानी वै संतर गाजे मनुआ डोले दूत संगत मेल सो पाए जो किछ कीना है नाम विसार दोख दुख सही है हुकम भया चलना क्यों रही है नारक कूप में गोते खावे जो जल से बाहर मीना है चौरासी नरक साकत को गाइये जैसा कीचे तैसो पाइये सतगुर बाजो मुक्त ना होई कित बाधा ग्रस्त दीना है खंडे तार गली अत पीढ़ी लेखा लीजे तिल ज्यो पीढ़ी मात पिता कलत्र सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाहे मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर कोई नाही गुर की सेवा मुक्त परायण अंदिन कीर्तन की नाहे कूड़ छोड़ साचे कौतावे जो इच्छो सोई फल पावो कूड़ छोड़ साचे को ताभो जो इच्छो सोई फल पावो साच बखर के वापारी विरले लै साचा सौदा कीना हे हर हर नाम बखर लै चालो दर्शन पावो सहज महल हो गुरमुख खोज लहे जन पूरे यो समदर्शी चीना हे रब बेअंत गुरमत को पावे गुर के शब्द मन को समझावे सत गुर की बाणी सत सत कर मन हो यो आत्म रामै लीना हे नारद सारद सेवक तेरे त्रिपवन सेवक वढो वडेरे सब तेरी कुदरत तू सिर दाता सब तेरो कारण कीना हे एक दर सेवे दर्द बझाए ओए दरगह पैधे सतगुरु छडाए हौ मैं बंधन सतगुरु तोड़े चित चंचल चलन ना दीना हे सतगुर मिलो चीन्हो विद साई जित प्रभ पावो गणत ना काई हौ मैं मार करो गुरु सेवा जन नानक हर रंग पीना हे मारू महला पहला असुर संघारण राम हमारा घट घट रमैया राम प्यारा आले नाले अलख ना लखिए मूले गुरमुख लिख विचारा हे गुरमुख साधु शरण तुम्हारी कर कृपा प्रभ पारो तारी अगन पानी सागरत गहरा गुर सत गुर पारो तारा हे मनमुख अंधुले सोझी नाही आवे जाहे मरे मर जाही

प्रेत पिंजर में है दुख कन्हेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे धर्म राय की बाकी लीजे जिन हर का नाम विसारा है सूरज तपै अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूड़ कमावे रोग बुरा बुरिया राहे मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर पवजल लंघस लंघस पारा।

जामखे फाहे सतगुरु तोड़े, जामखे फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत बिचारा है, कूड़ मुठी चाले बहोरा ही, मन मुख दाजे पढ़ पढ़ पाही, अमृत नाम गुर वडदाना, नाम जपहो सुख सारा है, सतगुर तुठा सच दृढ़ा है, सब दुख मेटे मार्ग पाए, कंडा

सतगुरु पुरख दाता वडदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिस को सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है, पंच तत् मिल काया कीनी, तिस मह राम रतन लै चीनी। आत्म राम राम है, आत्म हर पाइय शब्द विचारा है, सत संतोख रहो जन भाई खिमा गहो, सत गुर शरण आई आत्म चीन पर आत्म चीन हो, गुर संगत एहो निस्तारा है, साकत कूड़ कपट मह टेका, अहिंस निंदा करे अनेका, बिन सिमरन आभे पुन जाभे, ग्रभ जोनी नरक मझारा है, ताकत जमची कान ना चूके, जम का डंड ना कभू मुके, बाकी धर्म राय की लीजे, सिर अफरयो पार अफारा है, बिन गुर ताकत कहो को तरिया, हम मैं करता पव जल परिया, बिन गुर पार ना पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है, गुर की दात ना मिटे कोई, जिस बक्से तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है, गुरते भूले आवो जावो, जन्म मरो खुन पाप कमावो, साकत मूड अचेत ना चेथे, दुख लागैता राम पुकारा है, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते किए, किसको दे दोष दे तू, प्राणी सहो अपना

हर की भगत करो जन भाई अकथ कथो मन मने समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काट हारा है हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती नानक राम नाम मत उत्तम हर बक्से पार उतारा है मारू महला पहला शरण शरण परे गुरुदेव तुम्हारी तू समर्थ दयाल मुरारी तेरे चोज ना जाने कोई तू पूरा पुरख विधाता है तू आद जुगाद करे प्रतिपाला घट घट रूप अनूप दयाला जो तुद भावे ते वै चलावे सब तेरो किया कमाता है अंतर जोत भली जग जीवन घट सब घट भोगे हर रस पीवन आपे लेवे आपे देवे त्यो लोई जगत पित दाता है जगत उपाय खेल रचाया पवन पानी अग्नि जियो पाया देही नगरी नौ दरवाजे सो दसवा गुप्त रहता है चार नदी अग्नि असराला कोई गुरमुख बुझे शब्द निराला साकत दुर्मत डूबे दाजे गुर राखे हर लिव राता है अप तेज वाए पृथ्वी आकाश ता तेन मह पंच तत घर वासा सतगुर शब्द रहे रंग राता तज माया हो मैं प्राता है यो मन पीजै शब्द पतीजै बिना वैख्या टेक टिकी जय अंतर चोर मुहे घर मंदर इन साकत दूत ना जाता है दुंदर दूत भूत पी हाले खिंचो तान करे बेताले शब्द सुरत बिने आवे जावे पत खोई आवत जाता है कूड़ कलर तन भस्मे ढेरी बिन नावे कैसी पत तेरी बादे मुक्त नाही जुग चारे जम कंकर काल पर आता है जम दर बाधे मिले सजाई तिस अपराधी गत नहीं काई करण पलाव करे बिल लावे जो कुंडी मीन पर आता है ताकत फांसी पड़े इकेला जम बस किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त न सूझे आज काल पच जाता है सतगुर बाज ना बेली कोई ऐथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देवे कर कृपा यो सलल सलल मिलाता है भूले सिख गुरु समझाए उजड़ जादे मार्ग पाए तिस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग सखाता है गुर की भगत करे क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी सतगुर अलख कहो क्यों लखिया जिस बक्से तिसे पछाता है अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन गुरबाणी त्यो प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सबाई घट दीपक गुरमुख जाता है भोजन ज्ञान महारस मीठा जिनचा क्या तिन दर्शन दीठा दर्शन देख मिले बैरागी मन मनसा मार समाता है सतगुर सेवे से परधाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजे जिन सतगुर हर प्रभ जाता है मारू महला पहला साचे साहिब सिरजन हारे जिन धर चक्र धरे विचारे आपे करता कर कर वेखे साचा वे परवाहा है वेखी वेखी जंत उपाय दोए पंदी दोए रहा चलाए गुर पूरे बिन सतगुर ना हुई सच नाम जप लाहा है पढ़े मन मुख पर बिद नहीं जाना नाम ना बुझे परम पुलाना लेके वड्डी देन उगाही दुर्मत कागल फाहा है सिमृत शास्त्र वेद पुराणा वाद बखाने तत ना जाना बिन गुर पूरे तत ना पाइये सच सूचे सच रहा है सब सलाहे सुन सुन आखे आपे दाना सच पर आखे जिनको नदर करे प्रभ

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार से भी कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच धन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड्डा काम यह कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानु सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है आओ फिर एक जगह बैठ के उसका सिमरन करिए तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए आओ फिर इस खुशी दे मौके आपा भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ते शब्द गा के रसना पवित्र

सच्चे मार्गे चल दया उस्तते करे जहान। अठसठ तीरथ सगल पुन जी दया परवाने।

नानक माग महारस हर जप अठसठ तीरथ नाता। तुखारी राग दे बारह मां दे राही

सर्व सुखान दे चरण हर भोजल बिखम करे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर

भारत दे जो चल रहा है साल बिकमी सम्मत उसका ए आखरी महीना फगन फलगुण फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए गुणा दा फल गुणा दा फल है सज्जन दा मिला फलगुण फगन फलगुण फलगुण दे महीने दा उपदेश माजराग दी महान रचना बारह माह दी बाणी राही गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान पे करदे ने फगन दे महीने दे सज्जन हिरदे दे आन प्रगट होए ने आनंद बन गया है आनंद दी वर्षा हो गई है ए मिलाप किवें होया ए सज्जन किवें प्रगट होए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिला राम नू मिलान दे जिहड़े मददगार ने संत लोग सहायक ने बस उन्होंने बख्शिश की उन्होंने रहमत की उन्होंने मिला दिता क्योंकि उन्होंने संगत दे राम याद आ गया उन्होंने कोल बैठ के ईश्वर याद आ गया इस वास्ते भगत कबीर ते साफ कहंदे ने कबीर सेवा को दोनों भले एक संत एक राम राम जो दाता मुकुट का संत जपावे ना ये ठीक है कि मुक्ति परमात्मा दे हाथ च है और किसी ने भी नहीं देनी दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे किस दे पर दाते दे हथां तक पहुंच सकी है दाते दी दात प्राप्त कर सकी है उसकी सिफत सलाह कर सकी है उसनों जान सकी है संत मददगार ने प्रथम मनुख की कोशिश होवे सत्संग तक पहुंचना गुरु तक पहुंचना फिर गुरु का यह कम है अभ्यासी नू साधक नू राम तक पहुंचा देना परमात्मा तक पहुंचा देना तो संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा ना ही जाए हिरदे भी सेजा हुण सुखा नाल भर गई है सुहावनी हो गई है हुण दुखां लई कोई थां नहीं रही दरअसल मनुख तन करके ते इतना पीड़ित नहीं है सारी दुनिया दे जितना मन करके पीड़ित है तन दे तल ते इतने रोग नहीं जितने मानसिक रोग ने ये तन करके इतना दुखी नहीं है जितना मन करके है तो हृदय दी सेजा दते साहिब कहंदे ने सुख ही सुख प्रगट हो गए इस वास्ते सेजा सुहावनी हो गई है हुण दुखां लई कोई थां नहीं रही कोई ठिकाणा नहीं रहा नस वंजो किल वेखो करता घर आया ए पाप ए दुखो नस जाओ भज जाओ हुण हिरदे दी सेजा ते आनंद दे सोमे आनंद दे दाते आनंद दे सागर परिपूर्ण परमात्मा आण विराजे ने उदे गुणा दा वास्ता हो गया हुण तुसी रुखसत होवो हुण थोड़े लई कोई थां नहीं हुण थोड़े लई कोई ठिकाणा नहीं इच्छ पुनी वड भागणी वर पाया हर राय साहिब इत्थे फरमान करदे ने वड़ियां भागां वाली इस जीव रूपी कामण दियां सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई दरअसल इच्छा दा पूर्ण होना इच्छावां दा पूर्ण होना नहीं है परमात्मा दा मिलना ही सारियां इच्छावां दी पूर्णती है सबे इच्छा पूरियां जां पाया अगम अपारा जैसे उस अगम दी प्राप्ति होंदी है परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है मानो सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई सारे सुख प्राप्त हो गए तो सतगुरु इत्थे पै फरमान करदे ने सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई वड्डियां भागां वाली ए जीव इस्त्री इसनूं वर दी प्राप्ति हो गई हरी राय दी प्राप्ति हो गई मिल सईयां मंगल गावई गीत गोविंद अलाला ए जीव रूपी इस्त्री हुण साध रूपी सहेलियां दे बैठ के प्रभु दे मंगल गा रही है ईश्वर दी धुन अलाप रही है इस तरह हर वक्त ईश्वरमयी माहौल बनया होया है ईश्वरमयी वातावरण बनया होया है हर जेहा अवर न दिसई
कोई दूजा लवे ना लाए। संगत दिस गीत गांदियां गांदियां एक अनुभव प्राप्त होया कि हरि जैसा होर कोई भी नहीं। चाहे कोई गुणवान है, समर्थ है, दानी है, ज्ञानी है, साधक है, सिद्ध है, पर कोई भी हरि जैसा नहीं, क्योंकि हरि तो ही सारे सिद्ध पैदा होंदे ने, साधु पैदा होंदे ने, संत पैदा होंदे ने, तीर्थ पैदा होंदे ने, सब कुछ दा दाता ते ईश्वर ही है। इस वास्ते ईश्वर जैसा होर कोई भी नहीं। हालत पलत सवार नहीं चल दितियां न जा। शायद किने उस परिपूर्ण परमात्मा ने लोक सुहेला कर दिता, पर लोक सुहेला कर दिता, तन भी सुखी कर दिता, मन भी सुखी कर दिता। संसार दे तल ते सहूलतां पैदा हो गईयां और आत्मक तल ते रूहानी आनंदी जो है प्राप्ति हो गई। लोक ते परलोक इस तरीके नाल जो है सवर गए। संसार दे सहूलतां प्राप्त हो जान ते सहूलतां सारियां धन दे आसरे ते खड़ियां ने। उपजीविका लई पूर्ण धन होवे ते मन दे संतोख होवे, लोक सुहेला हो गया ते मन विच प्रभु दा नाम होवे, प्रभु चिंतन होवे तो परलोक सुहेला हो गया। इस तरह तन भी सुखी हो जांदा है, मन भी सुखी हो जांदा है। साहिब कहंदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने साडा लोक परलोक सुहेला कर दिता है, सफल कर दिता है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मे धाय। संसार दे ये जो चक्कर दी तरह बार बार आवना सी जावना सी आवना सी जावना सी, और उस चक्कर दे जो असी पए हुए सी, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लमे। ये जो इस चक्कर दे भटकना हमेशा दी बनी हुई सी, उस परिपूर्ण परमात्मा ने इस चक्कर दे चों कढ दिता है, इस सागर तो पार कर दिता है। मुड़ के जन्मा दी धावना नहीं, जन्मा दी भटकना नहीं, वो चक्कर नहीं। जेवा एक अनेक गुण तेरे नानक चरणी पाए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे गुण ते अनेका ने, पर तेरे गुणा दा उचारण करन लई, कथन करन लई मेरे कुल रखना सिर्फ एको ही है। इस वास्ते पूरे दे पूरे तेरे गुण आंकने बयान करने बहुत औखे ने, बहुत औखे ने। रसना एक है, कहिंदे ने जद रसना गांदिया गांदिया रस नूं उजागर कर बैठदी है, भाव रस नाल भर जांदी है, तां उसके अंदर एक लोभ पैदा हुंदा है, होर गावां होर गावां होर गुणा दा उचारण करां। और उत्थे अभ्यासी दे मन विच इह ख्याल भी पैदा हो जाए, काश किधरे करोड़ां जबाना मेरे कोल हुंदियां ते प्रभु दे मैं गीत गांदा, किधरे करोड़ां मेरे कोल कन होंदे ते मैं करोड़ां कन्नां नाल उसदी उस्थिति सुनदा। कोट करण दीजे प्रभु स्वामी, हर जस सुनिए अवनासी राम। तो इस तरह अभ्यासी दे मन विच एक लालसा पैदा हुंदी है, हे प्रभु अनंत गुणा दा तू मालिक है, पर तेरे गुणा नूं गायन कर सका मेरे कोल केवल इक्को ही रसना है। एक जबान नाल तेरे अनंत गुणा नूं मैं किवें गावां, किवें प्रगट करा। फिर भी साहिब कहिंदे ने एक रसना नाल गांदियां गांदियां चित तेरे चरणां च जुड़िया। इस तरीके नाल असी संसार सागर तो पार हो गए, उतर गए। फलगुण नित सा लाइए जिसनूं तिल ना तवाए। फलगुण दे महीने दा उपदेश साहिब करदे ने, उसकी सिख तो सलाह करो जो दे के रंचक मात्र भी तमा नहीं रखदा, तिल जितनी भी जो है तमा नहीं करदा। उसकी सिख तो सलाह करो, उसते गीत गायन करो, झोलियां हर तरीके नाल भर देवे ते जतान दी कोशिश भी ना करे। ऐसा जिड़ा दाता है परिपूर्ण परमात्मा, फगण दे महीने विच उसकी सिफ तो सलाह करा, तो फिर इस सारे दा सारा महीना सुख शांति चैन ते आनंद नाल बतीत हुंदा है। बारह माह इत्थे समाप्त होया ते बारह माह दा उपसंहार, वास्तविक तत्त निचोड़ इस शब्द विच, अखीरले शब्द विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करदे ने, जिन जिन नाम धे आया तिनके काज करे। जिस जिसने भी परमात्मा दा नाम आराधन कीता, उस दे ध्यान जोड़िया, उन्हां दे कम सिरे चढ़े। दरअसल
मुख गल परमात्मा दी है, ना किसे ग्रह दी, ना किसे नक्षत्र दी, ना किसे जो है उपग्रह दी। आज काल तो ऐसा ख्याल चले आ रहा है, इस ग्रह दी पूजा, उस ग्रह दी पूजा, ये ग्रह चंगा है, वो ग्रह माड़ा है, इसका चंगा असर है, उसका माड़ा असर है। साहिब कहंदे ने ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा तो है, सब कुछ ईश्वर तो है। इस वास्ते जिन्हां जिन्हां ने भी परमात्मा का नाम जपया, उन्हां दे कारज सिरे चढ़े और उन्हां नूं अध्यात्मक आनंद की प्राप्ति हुई। हर गुरु पूरा आराध्या दरगे सच खरे, जिन्हां ने पूरन गुरु की आराधना की थी, वो दरगाह दे खरे खड़े हो गए, भाव सुचे साबित होए, उन्हां दे कोई खोट नहीं थी, उन्हां दे कोई इल्जाम आयद ना होया। सर्व सुखाने दे चरण हर भव जल विखम करे, परमात्मा दे जड़े चरण ने वो सारे सुखां दे देण वाले ने, और जो उन्हां चरणां दा आसरा जो है पकड़ लैंदा है, वो भव जल तो पार हो जांदा है, संसार तो पार हो जांदा है, जदके वो भव जल अति विखम है, अति औखा है पार करना, पर प्रभु दे चरण ऐसे महान ने, उन्हां दे आसरे दे नाल मनुख पार हो जांदा है। प्रेम भगत तिन पाईया विखिया नाहे जरे, ऐसे जिहड़े साधक ने जो हरि दा नाम जपदे ने, उन्हां नूं प्रेमा भक्ति दी प्राप्ति हो जांदी है। अनेकां भक्तियां विद्वानां ने मनियां ने, जिस विच प्रेमा भक्ति सिरमौर है, महान है, अति उत्तम है, सिरमौर है। जिन्हां नूं भी प्रेमा भक्ति दी प्राप्ति हो गई, विखिया नाहे जरे, वो फिर मुड़ के विकारां दी जहर दे नाल जलदे नहीं, विकार उन्हां नूं जलांदे नहीं, विकार उन्हां दे अध्यात्मक गुणां नूं नाश नहीं करदे। प्रेम दा हिलोरा उन्हां च ऐसा पैदा हुंदा है, विकार कोसों दूर हो जांदे ने, ना उन्हां दी कल्पना, ना उन्हां दी सोचनी। विकारां दा आके बैठना ते एक पासे, विकारां बारे हुण कदी सोच भी नहीं फुरदी। कूड़ गए दुबदा नसी पूरन सच भरे, हिरदे दे पूर्ण तौर ते भर गया है सच, कूड़ झूठ नाश हो गया है, दुबदा मिट गई है। दो पासे दी धावना, कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी श्रद्धा कदी विपरीत, कदी प्रेम कदी घृणा, कदी ज्ञान कदी अज्ञान, ते कदी दान ते कदी कठोरता, इस तरह की जिहड़ी दुबदा सी, वो सारी दी सारी नाश हो गई, क्योंकि हिरदा सच नाल भर गया, कूड़ चला गया, और इस तरीके दे नाल पूर्णता नसीब हो गई। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक धरे, ऐसे अभ्यासी हर वक्त अपने अंतर आत्मे विच उस एक दा चिंतन करदे ने, ते पार ब्रह्म दी इसे नाम जप द्वारा सेवा करदे रहिंदे ने। आखरी उपदेश इस बारह माह दा, महादिवस मूरत भले जिसको नजर करे, जिस दे ते परिपूर्ण परमात्मा दी बख्शिश हो गई, ते जो नाम जपन लग पे है, ये बारह दे बारह महीने भले ने, महान ने, कोई रुत भैड़ी नहीं, कोई दिन भैड़ा नहीं, कोई महीना भैड़ा नहीं, महादिवस मूरत भले, सारे महीने भले ने, सारे दिन चंगे ने, और हर मुहूर्त चंगा है, पावन है। ऐसा ख्याल है, मुहूर्त कढ़ाओ इस कम दा, उस कम दा, लगन खुदाओ। साहिब कहंदे ने अगर कोई दिन माड़ा है, तो दिन बढ़ाया किसने, परमात्मा ने, तो वह कितों चंगा हो सकता है। जो दिन माड़ा बनांदा है, अक्सर माड़ियां चीजा माड़ियां तो ही बनदियां ने। जिसने महीना बहड़ा बनाया है, वो आप किथे चंगा होवेगा। जिसने दिन बहड़ा बनाया है, वो आप किथे चंगा होवेगा। जिसने ग्रह ते नक्षत्र भैड़े बनाए ने, ते उन्हां दा असर माड़ा है, वो आप किथे चंगा होवेगा। बहुत गहरी सोचनी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिती है, वो आप चंगा है, उस तो सारियां ही चंगियाईयां दा जन्म होया है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते, कुछ भी बुरा नहीं। हां मनुख दे जद कर्म अशुभ हो जांदे ने, अशुद्ध हो जांदे ने, और अंदर बुराई उजागर हो जांदी है, तो चारों पासे उसनु ऐसा दिखाई देंदा है, वो अपनी बुराई दी आप जिम्मेवारी नहीं लेंदा, फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, ते उसने बुरे करके
میں برا ہو گیا، اس دی برائی کر کے میں دکھت ہو گیا، تو یہ الزام کئی دفعہ منکھاں تے تھوپیا جاندا ہے، کئی دفعہ گرہ نچھتریاں تے تھوپیا جاندا ہے، مہینیاں تے تھوپیا جاندا ہے، دن تے تھوپیا جاندا ہے، یہ دن نہیں ٹھیک۔ تو صاحب کہنے نہیں، مہا دیوس مورت بھلے جس کو نظر کرے، جنہاں دے تے پرماتما دی نظر ہو گئی تے جو نام جپن لگ پئے، سارے مہینے انہاں لئی شوبنیک نے، سارے دن انہاں لئی مہان نے۔ نانک منگے درس دان کرپا کرو ہرے، اے پریپورن پرماتما نانک ایک دان تیتھو منگدا ہے، تو بخشش کر، کرپا کر، میری جھولی وچ اپنے درشنا دا دان پا، اپنے درشن دی بھکشا پا۔ بارہ ماہ ماج راگدا گرو ارجن دیو جی مہاراج اس ارداس اس پرارتھنا نال سماپت کر دینے۔ فلگن

0: तुखारी राग दे अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फलगुण दे महीने दा उपदेश चल रहे इस बारहवां दा आखरी महीना फलगुण गुणा दा फल। गुणा दा फल की है? फलगुण मन रहसी प्रेम सुभाया। मन सरक गया है, मौल गया, भिज गया, स्वभावक प्रेम रूपी मन बन गया, प्रेम दी मूर्ति, प्रेम दा स्वरूप, अंदर प्रेम उजागर हो गया, तो गुणा दा फल प्राप्त हो गया, फलगुण दा महीना आनंददायक हो गया। अन दिन रहस्य भया आप गवाया, जिस दिन दा हंकार मिटाया है, दिन रात अंदर रहस्य पैदा हो रहा है, रहस्य आश्चर्यता बिस्माद आश्चर्यता उदो होंदी है जद अखां वेखन ते पूरा वेख ना सकन, मन सोचे ते पूरा सोच ना सके, हथ प्राप्त करना चाहन ते सारा हथां विच आ ना सके, कन पूरा सुनना चाहन ते पूरा सुन ना सकन, ऐसी हालत विच रहस पैदा होंदा है। कहिंदे ने जैसे जैसे मनुख दा मन विज्ञान तो प्रभावित होया है, रहस्य खत्म हो गया है, क्योंकि विज्ञान दा दावा असी जान लिया है, इस पदार्थ दी सच्चाई नू जान लिया है। धर्म कहिंदा है तू कितना भी जान लवे, जानकारी अधूरी होवेगी, मुकम्मल नहीं होवेगी। पूरन नू जे तू जान भी लवे तां भी वो किसे हिस्से नू जानेगा, एक नुक्ते नू जानेगा। पूरन जानना अति कठिन है, अति कठिन है। इस वास्ते अठे पैर जिथे विज्ञानक ते नास्तिक तर्क दे जीवदा है, उठे भगत रहस्य दे जीवदा है, बिस्माद दे जीवदा है, अचलता दे जीवदा है। वो खिड़े हुए फुलां नू वेख के भी बिस्मादी हो जांदा है, जबकि विज्ञानक ने कह देना की है, कुछ खनिज पदार्थ ने, कुछ पानी है, कुछ कैल्शियम है, उसका जिहड़ा जोड़ है वो एक फुल है और की है। पर नहीं, इस सब कुछ दे जोड़ तो बिना भी कुछ फुल है। कोई कवि नू दिखाई देंदा है, एक संत नू दिखाई देंदा है, भगत नू दिखाई देंदा है, तार्किक नू नहीं दिखाई देंदा, साइंटिस्ट नू नहीं दिखाई देंदा। साइंटिस्ट उपर उपर निगाह रखता है, इहदे च पानी कितना है, कैल्शियम कितना है, लोहा कितना है, जस्त कितना है, इहदे च बाकी दियां धातुआं कितनियां ने। लेकिन संत कुछ होर देखता है, इस जोड़ तो जो कुछ बने है और अगम्मी बने है और इस दे जो अदृष्टता दी झलक है वो देख के संत बिस्माद दी दुनिया दे खो जांदा है। तो अन दिन रहस्य भया आप गवाया, दिन रात बिस्माद बने होया है, रहस्य बने होया है, क्योंकि अपना आप मिट गया है और रहस्यमयी ए अवस्था बन गई है। मन मोह चुकाया जांच भाया, करके रपा घर आ, अरदास कीती जोदड़ी कीती, हे परिपूर्ण परमात्मा तू दया कर बख्शिश कर, मेरे हृदय दे घर विच आ। ऐसा अरदास जोदड़ी करदियां करदियां मन विचों मोह मिट गया और जो कुछ परमात्मा नू चंगा लगदा है वो सानू चंगा लगन लग पिया, ऐसी जो है अवस्था बन गई। मन मोह चुकाया जांच भाया, कर के रपा घर आओ, बहुते वेश करी फिर बाजो मैली लहा न था। पर जीव रूपी स्त्री एक परमात्मा दी प्राप्ति तो बिना, एक उसकी याद तो बिना कितने भी धार्मिक वेश करे, कितने भी धार्मिक श्रृंगार करे, ता भी उन्हों निज थां दी किथे प्राप्ति, भटकना ते बनी ही रहंदी है। हार डोर रस पाठ पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी, पर जे किधरे परमात्मा लोड़ महसूस करे ते हृदय विच परमात्मा दी लोड़ पैदा हो जाए, चाहत पैदा हो जाए, मानो ओ ते सिंगारी गई, मानो उसने गले विच मोतियां दे हार पा ले ने, मानो उसने अपना सारे दा सारा बदम सिंगार छड़े है, सजा छड़े है, क्योंकि हृदय विच उसकी लोड़ पैदा हो गई है और परमात्मा नू चंगी लग गई है। नानक मेल लई गुर अपने घर वर पाया नारी, साहिब कहंदे ने हिरदे रूपी घर दे छी इस जीव रूपी स्त्री ने परमात्मा रूपी वर दी प्राप्ति जो है कर ली। इस तरह परिपूर्ण परमात्मा ने गुरु ने बख्शिश की थी, रहमत की थी। अगां तुखारी राग दा ए बारामा दा समाप्ति दा शब्द गुरु नानक देव जी महाराज सारण इंज बयान करदे ने, बेदस महारुति थिति वार भले बेदस दे कहंदे ने दोनों दस बेदस बारा बारह महीने ए रुत्तां ए थित ते वार सारे दे सारे भले ने। ना कोई महीना माड़ा है, ना कोई दिन माड़ा है, ना कोई रुत माड़ी है, ना कोई वार माड़ा है, ना कोई थित माड़ा। मनुख दी सोचनी अज्ञानता करके है। साहिब कहंदे ने बेदस महारुति थिति वार भले ए बारह महीने ए तरह तरह दियां रुत्तां ए नित बदलदी थित ए नित बदल दे दिन ते वार साहिब कहंदे ने सारे ही भले ने। घड़ी मूरत पल साचे आए सहज मिले। सहज सुभा जदों दे परमात्मा मिले ने उस सच दी प्राप्ति होई है, ये सूझ मिल गई है। महीने सारे चंगे ने, घड़ियां सारियां चंगियां ने, रुत्तां सारियां चंगियां ने, दिन सारे ही चंगे ने, थित्तां सारियां चंगियां ने। सच दी प्राप्ति दे नाल ए सच अंदरों उगड़े है, ए असलियत बार प्रगट हुई है। प्रभ मिले ते आरे कारज सारे करता तब विद जाने। इस तरीके नाल परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई, सारे साडे कारज सवर गए। ओ जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है हर विधि दा दाता है, बनाण वाला है, ते सब कुछ जानदा है जो जीवां दे अंदर चलदा है। जिन सिंगारी तिसे तियारी मेल भया रंग माणे। साहिब कहिंदे परमात्मा दा मिलाप हो गया है और जीव रूपी इसी तरह तरह दे रंग माण रही है। उस परिपूर्ण परमात्मा ने प्यार पा लिया है और उसे ने आप ही सिंगारे है, उन्हें अपने गुणा नाल आप ही सिंगारे है, ते अपने गुणा करके आप ही प्यार पाया है। घर सेज सुहावी जा फिर रावी गुरमुख मस्तक भागो। साहिब कहिंदे ने जदों गुरु नूं मुख रख के जीवन बतीत कीता, भाग मस्तक ते जा गया और इस तरह हिरदे दी सेजा सुहावनी बन गई ते परमात्मा दी प्राप्ति हो गई। नानक अहनिस रावे प्रीतम हरवर थिर सुहाग। सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करदे ने, जेड़ा भी दिन रात प्रभु दा नाम जपदा है, उस प्रीतम दे गुणा दा रमन करदा है, ओदा सुहाग थिर हो जांदा है, ओदा सुख अटल हो जांदा है, उन्हूं नेचल अवस्था दी जो है प्राप्ति हो जांदी है। बारह महीनियां दा ये सारण साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, बस केवल नाम जपी जाओ, हर दिन थोड़े लिए चंगा साबित होवेगा, हर महीना चंगा साबित होवेगा, हर साल चंगा साबित होवेगा, हर थित ते हर वार ए नित नवियां खुशियां नूं जो है जन्म देणगे। तू एक कम कर, बाकी सारे कम अपने आप हुंदे जाणगे। और ओ इक्को कम है, एक दी आराधना, एक दा जाप, एक दा रमन, एक दी स्रोत, एक दी मनोत, एक दी आराधना। सतगुरु रहमत करे इस बारह माह दी बाणी दे विचार द्वारा मन विच एक दा चिंतन जागे, ताकि जीवन सारा सुखमय बतीत होवे।
1: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
4: Satnam. Wow.

अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी की अपार मेहर हो रही है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणों विच नितनेम अनुसार सतसंगत का अमोलक समा चल रहा है। गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण करके आनंद माणिया है। जिन्ना समा होर सतगुरु बख्शते हैं

मानस जन्म दुलंभ है हुए न वारी वार जो बन फल पाके पौई गिरे बहुत न लगे डार। कबीरा तू ही कबीर तू तेरो नौ कबीर राम रतन तब पाइए।

जानू क्या हुए कबीर गर्व ना कीजिए देही देख न सुरंगा आज काल तज जाऊंगे ज्यों का चूरी भंग भ्यंग कबीर लूटना है ता लूट लै राम नाम लै लूट फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट कबीर ऐसा कोई ना जनमो अपने कर लावे आग पांचों लड़का जार के रहे राम लिव लाग को है लड़का बेची लड़की बेचे कोए सांझा करे कबीर सिंह हर संग मनज करे कबीर ए चेतावनी मत सहसा रह जाए कबीर चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोग वै तिनको गुड़ लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़वो भलो।

दिन दोनों बचन गवाए। वीर हरदे वीर तन हरे चुन किहनो ना रहाए, बलिहारी इस प्रीत को जे जात बरन कुल जाए। वीर मुक्त द्वारा संकुरा राई दसने पाए, मन तो मैल होए रहो निकसो क्यों कर जाए। वीर ऐसा सतगुरु जे मिले तुठा करे पसाओ, मुक्त द्वारा मुकला सजे आव जाओ। कबीर नाम हुए शान छापरी, नाम हुए कर नहीं गाओ। मत हर पूछे कौन है मेरे जात ना जाओ। तीर मोए मरने का चाओ है मरो तहर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परम वरे बात। वीर ना हम किया न करें है ना कर सके शरीर, क्या जानू किस हर किया पे हो कबीर कबीर। वीर सपने हूँ बरडाय कै जय मुख निसे राम, ता के पग न पहनी।

गागर जल परी आजकल गहें फूट घर जो ना चेते अपनो आदमा जलहे लहे गे लूट वीर कुकर राम को मुखिया में ना हूँ गए हमारे देवरी जय खेचे तें जाऊँ वीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए हृदय राम न चेती ये जपनी क्या होए कबीर।

राम भी ना लिए जिए तंगोरा हो एक वीर पारस चांद चंदने तिन है एक सुगंद तै मिलत उत्तम पै लोहो कांठ निर्गंध कबीर जम का ठांगा बुरा है हो नहीं सहया जाए एक सो साधु मोहि मिलियो तिन लिया अंचल लाए कबीर वैद कहे हो ही भुला भला दारू मेरे बस ये तो बस संग पालती जब पावल खस ये नौत नौवत अपनी दिन दस ले जाए नदी मा नाम संजोगी संजोग ज्यों गौर न मिले आए कबीर शांत समुंदर मस करो कलम करो बन राय उसदा का जो करो हर जस लिखन न जाए वीर जात जिला क्या करे हृदय से कपाल कबीर अनमैया कंठ मूल चूकै सर्व जंजाल कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए पांचो लड़के मार के रहे राम लियो जाए कबीर ऐसा को नहीं ये तन दे विभूक अंधा लोग न जानी रहो कबीर कूक वीर सत्ती पुकारे चेतड़ी सुन हो वीर मसान लोग सवाया चल गयो हम तुम काम निदान वीर मान पांखी त्यो डुड दर्द जाए जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए वीर जाको खोजते पायो खोई ठोर छोई फिर कह तू पया जाको कहता और वीर मारी कुसंग पी केले निकट जो घेर ओ चूल्हे ओ चीरिए सात संग न हेर वीर पार पराई सिर चरे चलियो चाहे बाट अपने पारे ना डरे आगे ओ कटकाट कबीर बन की दादी लकड़ी ठांडी करे पुकार मत बस पढ़ू लोहार के जा रे दूजे बार कबीर एक मरंते दोए दोए मरंते चार चार मरंता छे मुए चार पुरख लुए नार कबीर देख देख जग टुंडिया कहो ना पाया ठोर जिन ए ना ए जिन हार का नाम न चेत्यो कहा अपने और कबीर संगत करिए साधकी अंत करे सतसंग न कीजिए जा ते हुए बना कबीर जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए जिन हर एंड का नाम ना चे

अवरे आसन रास नानक परे मानहि। जो हर नाम उदास वीर सिख साखा भते किए किसो पियो नगवीता। चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो चीत। कबीर तारण बपरा क्या करे जो राम ना करे सहाय। जय जय डाली पग तरु सोई मुर मुर जाए। कबीर अवरा को उपदेश देश दे मुख में पग है रेत। रास बरानी रखते खाया कर का खेत। कबीर साधु की संगत रहूं जौ की तुसी खाऊं। हून हार सो होए है ठाकर संग न जाऊं। कबीर संगत साध की दिन दिन गुना हेत। ताकत कारी काबरी तोहे हुए ना सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं किस मुंडाए काए। जो किस किया सो मन किया मुंडा मुंड जाए। कबीर राम ना छोड़िए तन तन जाए तां जाओ। चरण कमल चित बेदया राम नाम समाओ। कबीर जो हम जंत बजावत रहे टूट गई सवतार। जंत बेचारा क्या करे चले बजाओ नहार। कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते पर न जाए। आप डूबे वेद में चले जी भाए। कबीर जीते पापिए राखे तले दराए। पारगट पै निदान सब जब पूछे धर्म राय। वीर हर का सिमर छाड़ के पालियो बहुत कटंब। धंधा करता रह गया पाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमर छाड़ के रात जगावन जाए। तरफन होए के उतरे जाए अपने खाए। वीर हर का सिमरन छोड़ के यही रखे नार गढ़ी होए कै।

प्रकृत हो गोग्राम कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास जय कुल दास नाम तुझे सो कुल डाक डाक पुलास कबीर है गय बहन सगन पन लाख तजा फहराए आस कृते मुखिया पली नो हर सिमरत जिन जाय जाहि वीर साव जग हो फिरयो मांगद कंध चढ़ाए कोई काहू को नहीं सब देखी तो तुझ जाए मार्ग मोती बिथरे अंधा निश्चय आए ज्योत बिना जगदीश की जगत उलंघ जाए बूढ़ा बंस कबीर का उपजे पूत कमाल हर का सिंह चढ़ के चार लै आया माल कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजिए कोए पाछे पहु न दीजिए आगे होए सो होए कबीर जग बांधो जय देवरी तै मत बांधो कबीर जय है आटा लोन ज्यों सोन समान सही।

ना छोड़ी रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझको सरवण सुनो तो नाओ बैन उतरो तू नाम जी चरण कमल बिठाओ। शरीर सुर्ग नरक ते मैं रहो सतगुर तेरे भगत प्रदासाद चरण कमल की मौज में रहो अंतराद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे मुनमान कह वो को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो कहे ना को पत्याय हर जैसा है कैसा तू ही रहो हर गुण गाए। कबीर चुगे सितारे पी चुगे चुग चुग सितारे जैसे वच हर रह गूंज मन माया मन तारे। कबीर अंबर कनक सुवर छाया वर्ष भरे सरताल चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चट्टी जो निस्वच्छ रे आए।

साहड़ी जैसे उगत पासुर। वीर सूता क्या करे जाग हो रहो रहो पै दुख जहाँ का वसा गोर में सोखो सोवे सुख। वीर सूता क्या करे उठ न के ना जप मरार एक दिन सो सुनो हो गो लावे गोर पसार। वीर सूता क्या करे बैठा रहे जाग जाके संग ते वछरा ता ही टके संगला। कबीर संत की गैल न छोड़िए मार्ग लागा जाओ पेख थी पुनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग न कीजिए दूरों जाइए पाग मासन कारो पसिए तो कस लग दाग। वीरा राम ना चेत्यो जरा पहुँचो आए लागी मंदिर द्वार पे अब क्या कांड्या जाए। कबीर कारण सो पियो जो कि नो करतार इस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लगे आंब जाए पुछो खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजे मूल ले मन हठ तीर्थ जाए देखा देखी स्वागतार फूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार इस प्रभासे जो रहे बूंदे काली तार। कबीर कागद की उवरी मस के कर्म का पाठ पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पड़ी बाट। कबीर काल करंता विकार अब करता सोए काल पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत एक देश जैसी तोई खलाख दिसे चंचल भोकना मत ही नैन पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जमक ने करे तिस्कार जिन ए जमुआ सिरजिया सो जपया प्रभुगार। कबीर कस्तूरी प्या और पहे सबदास ज्यो ज्यो भक्त कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर घर परियो कुटुंब कै ठाठे रिहो ज्यो राम आए परे परम अराए के बीचे सुमा ताम। कबीर साकत ते सुकर फला राखे अच्छा गाँव वो साकत वपरा मर गया कोई ना लहे ना। वीर कौडी कौडी जोर के जोरे लख करोर चलती वार न कसी मिलो लई लंगोटी तोर। वीर वैष्णो हुआ तो क्या क्या माला मिली चार बाहर कंचन बहरा पीतर परी पंगार। वीर रोड़ा हुए रे वाटका।

जानिया नहीं तिन कछ नींद पाए। हमो जो बुझा बुझना पूरी परी बुलाए। पीर मारे बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और लागी चोट ब्रह्म पीर हो।

साईं न घरा हुए जहाँ कारण तू भाग दे दिल ही पीतर जोए से तू भरा क्या जितम भी जाए वीर जहाँ की दिल कावत नहीं ताको कहाँ खुदाई वीर अल्लाह की कर बंदगी जैसे मृत दुख जाए दिल में साईं प्रगत बिटे दूजे बुलंती नाए वीर जोरी किए जुलम है कहता ना हलाल डॉक्टर लेखा मांगिए तब हुए गो कौन हवाल कबीर खूब काना की चरी जहाँ में अमृत लोना हेरा तरुटी कारने गला कटा भी कौन कबीर गुर लगा तब जानिए मिटे मोह कंताप हर सोग दाजे नहीं तब हरा आपे आप कबीर राम कहन में तेज है ता मैं एक विचार सोई राम सबे कहे सोई कौतुक सहार कबीर राम में राम को कबे कहे वे माहे एक एक एक अनेके मिल गया एक समाना एक कबीर जा कर साधना सेविए हर की सेवा ना है ते कर मरहट सार थे भूत बसे तन मा तन माहे कबीर गुंदा हुआ बहरा बहरा हुआ कान पाओ ते सिंगल पया मारिया सतगुर बान कबीर सतगुर सुर में बहाया बांधो एक लागत ही पॉइंट गिर परया पराय करे देख छेक कबीर निर्मल बूंद काश की पार गई तू बेकार भिन्न संग त्यों माया नहीं होए गई पंड पटचार कबीर निर्मल बूंद काश की नीनी भूम मिलाए एनक सयाने सच मिल जाए ना निर्भरी जाए कबीर हज काम हो जाए था आगे मिलिया खदाए साई मुझसे लर परया तुझे किन फरमाई गाए कबीर हज कांबे होए होए गया केती बार कबीर साई मुझ में क्या खता मुखो न बोले पीर कबीर जी जो मारे जोर कर कैसे लहे जो हलाल दस दे जब कांड है होएगा कौन हवाल कबीर जोर किया सो जुल्म है दे जवाब खुदाए दफ्तर लिखा नीक से मार मुए मुए खाए।

राम लगुची तो नामक तरलोच नाम के राम संभाल हाथ पांव कर काम सब चीतन संजन नाल महिला पंजवा वीरा हमरा को नहीं हम किसको हो के नाहे जिन ए चरण रचाया तिस ही माए समाहे वीर की चिर आटा गिर पड़या इतना आयो हाथ पीसत पीसत चबिया सोई निव्या साथ कबीर मन जाने सब बात जानत ही अवघन करे काहे की कुशलात काहे की कुशलात हाथ दीप हाथ दीप कोई परे कबीर लागे प्रीत सजान क्यों बरजे लोग जान तासो टूटी क्यों ने झांके जी प्राण पीर कोठे मंडप हेत करे सवार कार्य साढ़े तीन हथ कहीं तपोने चार कबीर जो मैं चितव ना चित करे क्या मेरे चितवे होए अपना चितव्या हर करे जो मेरे चित न होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी चित्यो चित्यो पी आपे धोए नान सो सलाइए जे सब ना सार करे मला पंजवा कबीर राम ना चित्यो फिर लाल माही पाप करंता मर गया।

सावत रखे ता राम पज नहे ता बिन बिन थी बात वीर किसो किसो कुपिए ना सोइए असार रात दिन से तूपने कबू के सुने पकार वीर काया कजली बन पया मन कंचर में नक्त अकस ज्ञान रत्न है केवट विरलाय संत।

जान्यो नहीं, पालियो कटो कटको कुटुम्ब संदेही में मर गया बाहर पही ना बम। कबीर आखी के रे मटके पाल पाल गई भाई, मन जंजाल न छोड़ी जम दिया दमाना दमामा आई। वीर तरवर रूपी राम है फल रूपी है, राग छाया रूपी साग है जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए वह राम सफलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी तेल करंत। वीर दाता तरवर दया फल उपकार, जवंत पंखी चले दिसावरी बिरखा सफल फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए लाट, मुक्त पदार्थ पाइए इंदा ठाकना अवकट काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ ते आद, पर्सन से ठीक उसके जो कि नो सो लाओ। कबीर भाग माछली सिरा पान, जो जो प्राणी खाहे तीर्थ।

चलो पीले छोड़ो किसी लिखा हो नाए आठ पह जाम और चौठस करी तो निरखत रहे जियो नीचे लो निको करो सब कट देखो पियो सुन सखी पी में जियो बसे घी में बस के पियो जियो पियो बुझो नहीं काट में जियो के पियो कबीर बामन गुरु है जग का भगतन का गुरु नाहे अर्ज उर्ज के पच मुआ चारों बेदू माहे हर है खांड रेत में बिखरी खाती चुनी ना हाथी चुनी ना जाए कह कबीरा गुर गुर भली बुझाई कीती होए कह खाए कबीर ज्यों तो साध प्रेम की शीश काट कर धोए खेलत खेलत हाल कर जो कुछ होए ता होए कबीर ज्यों तो साध परम की पाके से थी खेल काची सरसों खेल के ना खल पई ना तेल ढूंढ तोल आंध गत आरचीनत नाही संत कै नाम तू पाइए बिन भगवंत भगवंत बिन भगतो भगवंत हर सो हीरा छोड़ कै करे आन की आस ते नर दो जित जाएंगे सत सत पाखे रविदास सुवीर जौ ग्रह करे ता धर्म कर नहीं ता कर विराग विरागी बंधन करे ता को बड़े अपाग एक ओंकार सतगुर प्रसाद स्वरूप सेख बीज के जित दिहाड़े धनवरी साहे लय लिखाए मलक जिन जे जे कन्नी सुनी दा मूह दिखा ले आए जिंदु मुनवाणी कढ़ीए हड्डा को कूकड़काए साहे लिखे न चलनी जिंदु को समझाए जिंद बोटी मरण वर लै जासी फिर पर नाए अपन हथी जोल कैल कै गल लगे ताए बालो निक्की परस गलात कन्नी न सुने आए फरीदा किड़ी पवंदड़ी पवंदी खड़ा ना आप सुनाए

बुझे किज किज ना सुझे दुनिया कुझी पाए साई मेरे चंदा पीता नहीं था अंब की दया जा आए सीधा जे जाना तिल थोड़े संभुत बुक परी जे जाना तो नजरा ता थोड़ा मान करी जे जाना लड़ छिजड़ा छिजना पींदी पाई गंड क्या जेवड़ में नाहे कोई साव जग दिखा हंड खरीदा जे तू अकल दीप काले लिखना लेख आप मेरे जीवन में फिरनी आता देख वृद्धा जो तै मारन मुक्तियाँ इना न मारे कुम आप नरे कर जाइए पैर तना के चुम पैर तना दे चुम फरीदा जा तू खटन वेलता तू रत्ता दुनी स्यों मार्ग सवाई जा पड़िया ता लगिया जे फरीदा जो सिया दाढ़ी होई पूर अगा नेड़े आया पिछा रहा दूर देख फरीदा जीतिया चक्कर होई बस साई बाजू अपने बेदन कहिए किस तर फरीदा अखी देख पीणिया सुन सुन ने कन सा सप्तन जी आईया होर करें दी बन फरीदा काली जनी नारावया तौली रावे कोये कर साई क्यों परेड़ी रंगदान रंगन वेला होए महिला तीजा फरीदा काली तौली साहे सदा है जे को चित करे अपना लाया परम ना लगाए लगी जे लोचे सब कोये एक करमल प्याला खत्म का जय पावे तैं दे फरीदा जिन लोयन जग मोया से लोयन मैं डिठ

छिजे व्याल कलताड़ी तां साईं देख दरवाड़ी फरीदा खौकना निंदिए काकू जी दिना कोए जीव दिया पैरां तले मुआ उपर होए फरीदा जान लभ तांधे क्या लभ तकूरा ने किचर चत न लगाइए छप्पड़ टुटे में फरीदा जंगल जंगल क्या पवे बणकंडा मोड़े बस्ती रब हियालिए जंगल जंगल क्या ढूंढे फरीदा इन्हें निकी झिंगिया थल ढूंगर कव्यो आज फरीदे कुंजरा सह कुहा फरीदा राती वडिया दुख दुख उठन पास तिग तना दा जीविया जिना बढ़ानी आस फरीदा जे मैं होंदा बारिया मिता एड़ा हिला हेड़ा जले मजीठ ज्यों उपर अंग यारा फरीदा लोड़े दाख जोड़िया किसर मीझे जट हंडे उन सताईंदा कहंदा लूड़े पट फरीदा गलिए चक्कर दूर कर नाल प्यारे ने चला तो तुझे कंबली रहा तो टुटे ने पिजो सिजो कंबली अल्लाह वरते में जाए मिला चना सजना टुटो ना ही ने फरीदा मैं भलायावा बगदा मत मैली हो जाए गहला रू ना जाने सिर पी मिट्टी खाए फरीदा शक्कर खंड नवास गुड़ माखियों माजा दुध सबे बस मिठी सबे वस्तु मिठिया रब न पूजन कुद फरीदा रोटी मेरी काटकी लावण मेरी भुख जिन्ना खाधी चोपड़ी कने सहन गे दुख दुखी सुखी खाए गए ठंडा पानी पियो फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तो साए जियो अज ना सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाहे जाए पुछो दोहा दुनी तुम क्यों रहन भाई सौरे तोई ना लहे पेये नहीं ठाओ फिर बातड़ी ना पुछी तन सुहागन ना सौरे पेये कंत की कंत अगम था ना सो सुहागनी जो पावे भी परवा नाती तोती संभरी सुती आए चंद फिरदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूई चंद जोबन जाते ना डरा जे सह प्रीत न जाए फरीदा किसी जोगन प्रीत बिन सुके सुक गए कमलाए फरीदा चिंत खटोला वाण दुख

कभी चल न आया पंजे वक्त मसीत उठ फरीदा उजू साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साईं नानवे सो सिर दी जे का पोतार जो सिर साईं नानवे सो सिर की जे काए कुन्ने हेठ चलाइए बालन चंदे थाए फरीदा किथे टंडे मैं पिया जिनी तू जुड़े हुए तै पासों वे लद गए तू अजे ना पुतीने हुए फरीदा मन मदान कर तोए टिब्बे लाहे अगे मूल नया सी दोजग संधी पाए महला पंजवा फरीदा खालक खलक में खलक वसे मन रब माहे मंदा किसनु आखिए जा तिस बिन कोई ना।

अनक जोन संकट नरक पंचता शासन दो गर्त करे है प्रेम भक्त उग्रे से नानक कर कृपा संत आप करे है गुरसमो फल सर्व मनोहर।

पुरख सनमराज कंस करतार्थ कियो उग्र सैन को राजा कहे सुसे जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमृत आयो श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमायो गुण गावे रविदास भक्त जय देव सरलोचन नम भक्त कबीर सदा गावे समलोचन भक्त बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुरु ज्ञान बना प्रभ अवर न जाने सुख देव परिषद गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस नान गुर नित नवतन जग चायो गुण गावे प्यार भक्त ना दास भयंगम मां देव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मन ब्यास के भेद भय करण विचारे ब्रह्मा गुण उतरे जिन हुकुम सर्व सिर सवारी ब्रह्मांड

पायो भर शब्द सच नाम संसीबो है जे सच संजम वर्त सच कर जन का लोकान दर्शन पर सिए गु कै सचन प्रमाण अमे दृष्ट सब करे हरे अग पाव सकल मल काम क्रोध लोभ वस करे सब बल सदा सुख मन वसे सुख संसारे खोवे गुरु नाम ने दुद्रिया जन्म काल कुत होवे।

भक्त है देखगा तपाई। गुरु अमरदास ने जो भक्त है देख दर्श पावो मुक्त, तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी युक्त। गुरु अमरदास निज भक्त है देख दर्श पाव मुक्त, गुरु अमरदास परचिए पोम पातक बनासे। गुरु अमरदास परचिए से सब के आशा से।

ते मुक्तपय सदगुरु शब्दमान गुर पर चा पायो गुरु रामदास कलयुग चढ़ाए सह शब्द निशान बिजायो ते सदा सह चवान संतोख सरा च्यो सदा शील सुना मोह सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाम गो है अजोनियो पाले अमर सत गुरु संग नवास गुरु रामदास कलयुग चढ़ाए तो सह सरोवर दास गुरजन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय नवासे जिनको गुर सो प्रसन्न दूर तो दुरंतर नासे गुरजन को सो प्रसन्न मान अवमान नवारे जिनको गौर सो प्रसन्न शब्द लग पाओ जल तारे परच्यो प्रमाण गुर पायो तिन सच्यो तिन सत्यो जन्म जग परच्यो प्रमाण गुर पायो तिन सत्यो जन्म जग श्री गुरु शरण पज कल कब भुक्त मुक्त सब गुरु लग सतगुर के माताणिया गो जो कजू सुमाणे अनपो ने जा नाम के जस भक्त गाने गुरु नानक अंगद अमर भक्त हर संग समाणे ए राजो गुरु राम दास रस जाने जन कसाए जन जाने और मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे भरा सर भरिया अकत कथा अमरा पुरी।

कारण कारण कहनमा कर जाको दृष्ट धारे शब्द रिद विचारे काम क्रोध खोवे जियो जियन सबन दाता अगम अज्ञान मुख्याता जी सबन दाता अगम ज्ञान मुख्याता एन सत्यांत आवे पलकना।

जपे दास पाठ बैंत कहे जो गुरु नाम रिद में करे सो जन मन दो थे रहे गुरबिन कोल अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुरबिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सा चिंगार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कहे जिन गुरु न देखियो न कियो।

जन जन से हो साढ़ तो हो हमें का फंदकार साध संग रत जियो देह गे त्रेसने चित बुला जगते है चरण कमल सदा से हो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही सार सब कर मन गयंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो भरपूर का जुग जुग वह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलाम कहन सहे को तुम सदका ब्रह्म विस्मरे तय गंत तनको मोह भया मन मत का चौरासी लख जोनो पाई रिश्त दिया सब को सदका सेवक कह भरपूर जुग जुग वह गुरु तेरा सब सदका वाह वाह का बड़ा तमाशा आपे ऐसे आपे जुटे आपे चंद सूर प्रगासा आपे जल आपे थल सम आपे किया कड़कड़ बासा आपे नारे आपे फुलनारी आपे सारे आपे पासा गुरमुख संगत सबे बचारो वाह वाह का बड़ा तमाशा किया खेर बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल तल गगन प्याल पूर रहा अमृत दे मीठे जाके बचना माने ब्रह्माद गुरु हथ काल कथा निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सत संग सेती मन खचना किया खेल बड़ मेल तमाशा अवा गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत ना दिया जस कोई न जाने से ब्रह्मचार ध्यान ते जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर और नहीं दूसर कोई पंजन गण समरा कारण तरण पंजन गण समरा कारण तरण प्राप्त होई नाना प्रकार जैन जाकियो जन मतरा रसना रसे श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चिते बसे गुरु समरास गय करिया।

सगल सुख सागर ज्या को मानो ध्यान करे तिरत सगल जो प्रभु पावे आत्म प्रगाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे ज्या को शिव मान गहे नाथ याद कंगलास कहो ज्या को जोगी जति सर साधक अनेक ताप जटा जूड़ पे किए फिर ते दास को सोचन सदगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को नाम गान ध्यान प्रगत तेज पंचे लोग प्रगासे वेद रस भटक प्रमुख भई सुख फरार सुख सहज बगासे सेवक सिद्ध सदा अत लुभत आल समो ज्यो कुसुम साचे नंदमान गुरिया तप्यो थेरे साचो सतगुरु रामदासे चार्यो संसार माया मत मोहत अमृत नाम दियो समरत फुन कीर्तवन सदा सुख संपुत हृदय से धन छोड़े सत दान बढ़ो तवंत महाबल सेवक दास के सत आहे कहाँ प्रवाह काहू की जाके भी करो गुर हाथ तीन पान पर भूल रहे सोई अपन सच कियो न जगत कोई अपने आप आप ही पायो सुर नर सुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व को जंत फरे अवनाशी चल जोनी समझो पर को तुम अपार परे कर्णकार समरस सदा सोई सर्व जीव जे मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय हर परम पद पायो सदगुरु नानक भक्त करियत मान तान कान गोबिंद दियो अंगद अनंत नूत ने तारी अगम ज्ञान रस रखियो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस आव कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय हर परम पद पायो नारद तू प्रलास गामा पो पल करके जो गण अमरीक जय देव तलोचन नामा और कमीर पण किन को अवतार पयो कल पिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जय जय जग में कह हर परम पद पायो मनसा कर समरण तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिण वाचा का समरण तुझे तिन दुख दर्द मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दस परस पार्थ सर बल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जय जय जग में कह हर परम पद पायो जे सतगुर समरंथ नैन के तिमर मिटे तिन जे सतगुर समरंथ हृदय हर नाम जनो दिन जे सतगुर समरंथ जी की तप मटावे जे सतगुर समरंथ हृदय सिद्ध नाम निध पावे सोई रामदास गुर बल पहाण मेल संगत धन धन करो जे सतगुर लाग प्रभ पाइये सो सतगुर सिमरो न रहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ियो पास ताके गौर ज्ञान प्रकट ग्यारो दुख दरिद्र हजार को नाथ कव कीर्त जो संत शरण मुड़ लागे तन काम करो जम को नहीं त्रास जब अंगद अंग संग नाम गुर त्यों गुर अमरदास कह गुर रामदास जन सतगुर से पदार्थ पायो निष्बास हर चरण आस ताते संत गान पाए तो माने तो मलिया गुर प्रगट सोभा।

कृपाण्यो लाख में लाख लखायो अगा मंगो चिरगा तुम भीर सदगुर परचायो गुर परचे परवाराज मैं जो कमायो तन तन गुर तन अपार सारे सुगुरु परायो गुरगम परमान अजर जरियो सर संतोख समायो गुर अर्जन कालो त्रै तै सहज योग निज पायो अम्यो रसना भदन बरदास लाखो पार गुर सूर शब्द में नवारियो पंचारंदर लियो सुन सहे निज कर सहारियो हर नाम ला गाजा जो गुरियो सतगुर दिवसायो गुर अर्जन त्रै तय जन के कस जी पायो सूरते गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार तो चले नहीं नेमा नाम सा निजा नाम निशान सतगुर शब्द सुहारियो भाव जल सहर से नाम हरी का बोय था तो सतगुर संग एक नाम लाग जगत उदरियो जगत दार नाम सतगुर तो के पायो अब नाही अवर कर काम भ्रम कर पूरी पड़ी जो स्रू भर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगत पयो तत्स्यों तत् मलायो अंगत कृपा कार्य अमर सतगुरु थिर कियो अमरदास अमरत शकर गुरु राम में दियो गुरु रामदास दर्शन पर से कह मथुरा अमृत बहन मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैण सतरू सतनाम सत संतोख धर्यो और आदि पुरख प्रताख लिखो शर्म सत धुर।

सगल सेठ लाग रह करो। ते जन जाचो संग त्रपहर जानियत बासर रहन बा जा को एक नाम क्यों। परमतीत परमेश्वर कह रंग रंगो भाषणा ते बार कह देखिया ताम क्यों। अपर अपरम पुर पुर कृष्ण प्रेम लागो बिन भगवंत रस नही और काम क्यों। मथुरा को प्रभु सर्वमय अर्जन गुर भक्त हित पाए रहो मिल राम क्यों। अंत न पाव देव सबे मन निर्मा शिव जो करी हुन वेद ब्रंच उपचार रहो हर जाप न छो ये करी। मथुरा हुन वेद ब्रंच उपचार रहो हर जाप न छो ये करी। मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जन माहि सही। जग्या और न जाए महा तो मैं अवतारो जागरियान कियो। तिनके दो कोट कदूर गए मथुरा जने अमृत नाम पियो। ये पहते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान पियो। प्रताचर दे गुर अर्जन के हर पूर्ण ब्राह्मण वास लियो। जब लो नहीं पागल ला रुदे तब लो नहीं भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में भूत थे कबू में ठह नहीं रे पुछतायो। तत्व जा जय मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जौन गर्भ न आयो। कल समुद्र पैरु प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जसर दे दो फगर दुर नारण। निर्मल पेश पात आस बने और न कोई मान बाज जन जाण्यो पयो ते संसार सोई। तरन गग नवखंड में जो सब रूपी रहो भार पान मथुरा कछ भेद नहीं गुरे अर्जन प्रताप हार। अजय गंग जल टल सिख संग सब नावे नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्मा मुगावे। अजय चवर सर टोले नाम अमृत मुख लियो गुरे अर्जन सर शकर परमेश्वर दियो। मेरे नानक अंग ते अमर गुर गुरु रामदास हर पै गयो। हर बंस जगत जस्यो संचरो सो कम कहे श्री गुरुमयो। हर वंश जगत जा संचरो सो कम कहे श्री गुरुमयो। देवपुरी में गयो या परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो। रस कियो सुरदेव तोय जस जस जय जंपे असुर गए ते भाव पाप तन पीतर कंपे।

जन्म मरे पुरमाइए जे लर्म कुमाही जम जगात न लगी जे चले सतगुर भाई नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मनाए मन तन मैला अगनी चिंज भरी गंदी आए सरवर संत न जानिया काक पंखी संग सागत क्यों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरु कर्म कमाओ निर्मल नाम नानका गुर तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जा हर भक्त न पाओ पैदा खादा बाद है जा मन दूजा पाओ वेखना सुनना झूठ है मुख झूठा लाओ नानक नाम सुराए तू हरों में आओ जाओ एन विरले नाई कणे।

ज्यों तिसा धीर जाए सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कहै कहाए गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम त्याए अमृत बाणी तत है गुरमुख वसै मन आए हृदय कमल परगासया ज्योति ज्योत मिलाए नानक सतगुर तिन कौ मिलियोन जिन तुर मस्तक भाग लखाए अंदर तिशना अग है मनमुख भुख न जाए मोह कुटाम सब कूड़ है कूड़ रहे अलपटाई अनदन चिंता चिंत वै चिंता बद्धा जाई जमन मरण न चुकाई हौमै कर्म कमाए गुर सरनाई उबरै नानक लय छुड़ाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सतसंगत सतगुर भाए सतसंगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एह भौ जल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए गुर सिखी पाणा मन्या गुर पूरा पार लंघाए गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी पीगत पाए तुर मस्तक हर प्रभ लिखया गुर नानक मिलया आए जम कंकर मार बिधारिया न हर दरगाह लय छड़ाए गुर सिखा नो साबाश है हर तुठा मेल मिलाए गुर पूरा हर नाम दड़ाया जिन विचों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग देखाया हौ मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम वसाया गुरमति जम जोहो न सकै गुरमति जम जोहो न सकै सचै नाए समाया सब आपे आप वरतै करता जो भावै सो नाए लाया जन नानक नाव लय ता जीवै बिन नावै खिन मर जाया मन अंतर होमै रोग प्रम पूले मा होमै मा साकत दुर्जना नानक रोग उगवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अणत न काहू डोले जन नानक हर

दरगह निर्मल सोय। जो प्रभ रखे आप तिन कोय न मारई, अंदर नाम निधान सदा गुण सारई। एका टेक अगम मन तनु प्रभ तारई, लगा रंग अपार को ना उतारई। गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारई, नानक नाम निधान हृदय उरहारई। करे सु चंगा मान दुई गणत लाहे, अपनी नदर निहाल आपे लह लाए। ज्ञान देहु मति उपदेश विचों परम जाए, जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए। सब किस सब कछ तिस दै वास दूजी नाहीं जाए। नानक सुख आनंद पए प्रभ की मन रजाए।

नानक जौ मथन मधानिया जौ मथे त्रम राय। नाम त्याय न साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चव है कीतो पवन पुनीत। खुबड़ी कथाए मिठी गलन को मंत्रिया, नानक से उभरे जिन्ना पाग मथाए। सुतड़े सुखी सवाना जो रते सह अपना, प्रेम शोभा तनी सौ अठे पहर लवन। सुतड़े असंख माया झूठी कारणे, नानक से जगन। जे रसना नाम उचारणे मृग तिशना पेख पुलने, बुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरदया। नानक मन तन फब पात ते उदाहरण पार, ब्रह्म सम्रथ पुरख अपार तिसह उधारे नानका। जे सो सिमरे सिरजनहार दूजी छोड़ कवाटड़ी, एक सौ चित लाए दूजे भावी नानका। वहन लुड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार, सौदा करन बन जा रहा सच बखर जिनी लभया से सचड़े पासार। पंथा प्रेम न जानई भूली फिर गवार, नानक हर बिसराए कै पौंदे नरक अंधियार। माया मन होना बिसरै मंग दमा दम, सो प्रभ चित न आवई नानक नहीं करम। तिचर मूल ना थोड़ी दो जिचर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका। खाहे खर्च तन माल खंभ विकंदड़े जे नहा, किन्ना सावी तोला।

सागल समगरे तुम रह सूत्र तारी तुम से हो सो तुमरी गात मैं तो तुम ही जानी नानक दास

रहाउ। सतगुर नाम निदान दृढ़ाया, चिंता सगल बनासी। कर कृपा अपन कर लीना, मन बसया बनासी। ताको बिघन न कोहू लागे, जो सतगुर अपन राखे। चरण कमल बसेर दे अंतर, अमृत हर रस जाखे। कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की अछ पुजाई।

जिन मन की ये छिप जाई नानक दास ता कै बलिहारै जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा रहमत सदका साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे संपूर्णता दिवस की खुशी दे विच परसों तो लैके गुरुद्वारा साहब की समूह प्रबंधक कमेटी वालों आप समूह संगतां दे सहयोग नाल गुरु पातशाह जी की अपार कृपा सदका श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए गए सन। गुरु जी के प्यार वालियां संगतां ने वारी वारी जिन्ना समा मिलिया घंटा दो घंटे की बाणी पढ़न की सेवा की। पातशाह जी ने आप सेवा करवाई, संपूर्ण होने के भोग पाए गए। अरदास उपरंत गुरु पातशाह जी का पावन पवित्र मुख वाक आप जी ने सरवण किया। अज पूरी दुनिया के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपूर्णता दिवस बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाया जा रहा। कीर्तन दरबार हो रहे हैं, सो इस वेले सतगुरु पातशाह जी पावन हजूरी अंदर कीर्तन दीवान आरंभ होने लगे हैं। आप समूह संगतों को बेनती है कि परिवारों समेत गुरु पातशाह के चरणों में हाजरियां भर के बड़ी श्रद्धा भावना के नाल पातशाह जी का यह महान पावन पवित्र दिवस रल के मनाइए जी। परिवार समेत गुरु पातशाह जी के दरबार में पहुँचने की कृपा करो। सो इस वेले बहुत ही सत्कारयोग भाई मुख्तार सिंह जी भाई नवदीप सिंह जी संगतां नूं कीर्तन के नाल जोड़नगे। बीबिया वालों कीर्तन की हाजरी भरी जाएगी, उन्होंने भी बेनती है कि समय के नाल कीर्तन की हाजरी भरने वास्ते पहुँचने की कृपा करनी। आओ रल के अमृतमई बाणी के कीर्तन के नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा

कर कृपा प्रभु दीन दयाला गुण गा बहुरंग राताराओ सतगुर नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल बिनाशी कर कृपा पुनः कर लीना मन बसिया अविनाशी

कर सेवा सेवक प्रभु अपने जन मन की अच पुजाई। नानक दास कै बलहार जन पूर्ण पैज रखाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने जन मन की अच पुजाई। नानक दास

गुरमत साचा मन से नाम पलो पत साख हों में रोग दवाई है सब सचे सच पाक आकाशी पाताल तू त्रिभुवन रहा समाए।

पहला राम नाम मन वेदिया अवर के करी विचार सब सुरख सुख उपजे प्रभ रातो सुख तार ज्यों पावे त्यों राख तू मैं हर नाम आधार मन रे साची खसम रजाए जिन तन मन साज सिगारिया तिस सेती निवलाए रहाओ तन बैसंतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए तन है मंचल गालिए ती मन से रोग न जाए हर नाम में तुल न पुजई सब दुखी थोक बजाए कंचन के कोट डट करी बहु हैवर गैवर दान ओम दान गौआ कणी ती अंतर गर्भ गुमा

बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सच्चों ओर है सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखिए नीच ना जीते कोई इतने पांडे साजिए इक चानन त्यो लोए कर्म मिले सच पाइए थोर भक्त ना मेटे कोई साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए अकाश तथा विचारी है जे सतगुर माहि समाए ई अमृत संतोखिया दर्जे पैदा जाए कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए विरले को सोजी पही गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाए श्री राग महला पहला चित्ते जिसे तौल हर बगे बंक द्वार कर मन सुचि उसारिया दूजे हेत प्यार अंदर खाली प्रेम बिन कह तेरी तनसार पाई रे तन तन साफ ना होए राम नाम तन निर्मलो गुरदास करे प्रभ सोए रहाओ राम नाम तन निर्मलो जे देव है देवन हार आगे पूछ ना हो गई जिस बेली गुर करतार आप सदाए छुपी है आपके बख्शन हार मन मुख जाने अपने तिया पूछ संजोग नारी देख भी गाती है नाले हर तो सोग गुरुमुख शब्द रंगावले ऐनित हर रस भोग चित चले वित जावनो साकत डोल डोलाए बाहर ढूंढ भी गुची है कर्म है वस्त सोथाए मन मुख हो मैं कर्मती गुरुमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आर्या अपना मूल पछाण रकत बिंद का एतनो अग्नि पास निराण पवन के वस देहोरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मोआ ना लोड़े कोए सुख जीवन किस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोए नाम विहूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए ज्यों सुपने निष्फुली है।

हो जग लोए। अगन मरे जल पाई है जो बारिक दूध माए, बिन जल कमल सो नाती है बिन जल मीन मराए, नानक गुरमुख हर रस मिले जीवा हर गुण गाए। श्री राज महला पहला, डूंगर देख डरावनो पेई अड़े दरियास, ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास, पाई रे पाव जल बिखम डराओ पूरा सतगुर रस मिले।

अमर सो गुर करतार ही सच्चा सालाहना सच्चे खान प्यार दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किसी नाल न चलिया खप खप मोए असार सोना रूपा संचिए माल जाल जंजाल सब जग में दो ही फेरी है बिन नावे सिरताल पिंड पड़े जियो खेलसी बद फैली क्या हाल कुत्ता देख विरसी है नारी सेज पतार केवा चंदन लाई है कापड़ रूप सिगार केहू खेर लाई है छोड़ चले कारबार मेहर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिए अभिमान मनमुख नाम विसारिया जो डव दद्दा कान होमे कर कर जाए सी जो आया जग माहे सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुहाहे गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिये सच नाम सिर साहा पाप चाहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसा हो मनमुख पौ जल पच मोए गुरमुख तरे अथा हो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैसना नित चलने की तोक मुकाम ता पर जानी है जा रहे निंचल लोक दुनिया कैसे मुकामे कर सिद्क करनी खर्च बांधो लाग रहो नामे रहाओ जोगी का आसन कर बह मुल्ला बह मुकाम पंडित वखाने पोथियां सिद्ध बह देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुनजन शेष पी सलार दर पूछ पूछ

जन्म गवाया रहाओ। आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए, जी जंत ए क्या विचारे क्या को आप सुनाए, गुरुमुख आपे दे वडियाई आपे सेव कराए। देख पुतंग मोह लुभाना चल दिया नाल न जाई, सतगुरु से गुण निधान पाया किसकी कीम न पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा अंते होए सखाई। तेयने जग जीवन दाता मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे छौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वस्या अंत गया पछताई। तेयने जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करें दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस क्यों राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर सबदी विचार, सतगुर केवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुखदाता कर कृपा मन वसाई, नानक तो बा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई।

मन रे गुरमुख नाम से आए, तुर पूरब करते लिखिया तिना गुरमत नाम समाए। रहाओ बिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए। जे हर हर की चै बहुत लोची है, तीर्थ नामे ते आ जाए। हर का पाना भगती मनिया के भगत पै दर्शाए, गुर शब्द दृढ़ावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए। जे सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पान।

आवड़ा सच चुगे गुर पाए, हर रस्ती वे सहज रहे, उदे न आवे जाए। निज कर वासा पाया हर हर नाम समाए, मन रे गुर की कार कमाए, गुर के पाने जे चले, ता

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज तुमाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निर्लाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए, मनमुख उबे सुख गए।

कर्म कमावने पै किरत फिराओ, हुक्मे दर्शन देखना जह ते जह तह जाओ, हुक्मे हर हर मन वसे हुक्मे सच समाओ, हुक्म ना जाने बपुड़े पूले सिर गवार, मन हट कर्म कमाउंदे नित नित होए कुवार, अंतर सांत न आवे।

चार आए से परवान है सब कुल का करें उदार। सब नगरी कर्म कमाऊं दे नगरी बाहर ना कोए, जैसी नगर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आइए मनमुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाइए सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भगत है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए, सदा फिर निज चल पाई है ना ओ मरे न जाए। शब्द मिली ना बिछड़े फिर के अंक समाए, हर निर्मल अप उजला दिन गुर पाया न जाए। पाठ पढ़े ना बूझई तेसी परम पुलाए, गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए, बिन शब्द जग दुखिया फिरे मन मुखा नो गई खाए। सबदे नाम ते आये सबदे सच समाए, माया फूले सिद फिरे समाज ना लगे सुवाए। तीने लो व्यापत है अदक रही लपटाए, बिन गुरु मुक्त न पाये ना दुबदा माया जाए। माया किसनो आती है क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है हों में कर्म कमाए। बिन शब्द परम न चूके ना विच्चों हों में जाए, बिन प्रीति भगत न हो गई बिन शब्द थाए न पाए। शब्दे हों में मारिए माया का परम जाए, नाम पदार्थ पाइए गुरमुख सहितवाए। बिन गुरु गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए, भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर्षा लाहिए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पुलाए, मन मुख कर्म

परम गया सौ पा गया, हर चरणी चित लाए, गुरमुख शब्द कमाए, हर वसे मन आए, कर महल सच समाए, जम काल न सके खाए, नामा चीबा कबीर जुलाहा, पूरे गुर के गत पाए, ब्रह्म के देते शब्द पछाने, हों मैं जात गवाए, तुर नर किनकी बाणी गावे, कोई न मेटे पाए, जैत पुत कर्म तर्म किस संयम ना पड़े, दूजा पाव ना जाने, सतगुर पेते है निर्मल होआ, अंदर नाम बखाने, एको पड़े एको नाव बूझे, दूजा अवर न जाने, खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पुलाए, सतगुर सेवे ता गत मित पावे, हर जियो मन वसाए, सच्ची बाणी क्यों चित लागे, आवन जान रहा है, पंडित पर पड़वाद वखाने, बिन गुर परम पुलाए, लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए, जा नाव चेते तांगत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए, सत संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुर मिले सुवाए, मन तन अर्पी आप गवाए, चलना सतगुर भाए, सद बलिहारी गुर अपने विटों, जे हर से की चित लाए, सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से ती रंग राता, प्रभ निकट वसै सबना कट अंतर, गुरमुख विर ले जाता, नानक नाम मिले वडियाई, गुर के शब्द पछाता, श्री राग महला तीजा, सहजैनो सब लोच दी बिन गुर पाया ना जाए, पर पंडित ज्योत की थके, पेखी परम पुलाए, गुर पेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए, पाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच कोए, रहाओ सहजे गाव्या छाए पवे, बिन सहजे कथनी बाग, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाए, सहजे ही गुण ऊचरे, भगत करे लिव लाए, सबजे ही हर मन वसे, रसना हर रस खाए, सहजे काल विदारिया, सच शरणाई पाए, सहजे हर नाम मन वसिया, सच्ची कार कमाए, केवट पाजी जिन्नी पाया, सहजे रहे समाए, माया विच सहज ना उपजे, माया दूजे भाए, मन मुख कर्म कमावने, होमे जले जलाए, जम्मन मरन न चूके, फिर फिर आवे जाए, त्रिहो गुणा विच सहज ना पाए, त्रै गुण परम पुला

सबद अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार। सहजे अदृष्ट पछाणिए निरपौ जोत निरंकार सबना जिया का इक दाता ज्योति जोत मिलावन हार। पूरे सबद सलाहिए जिसका अंत न पारावार ज्ञानिया का तन नाम है सहज करे व्यापार अंगिन लाहा हर नाम लेन अखुत परे पंडार। नानक तोट न आवे दिए देवन हार श्री राज महला तीजा। सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए पूरे शब्द सब सोजी होई हर नाम रह समाए। मन मेरे सतगुरु त्यों चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यों रहना गुर के शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल करना। वड्डे पाग नाव पाईए गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई। इतना मन मुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया लख चौरासी फिर आवे बिरसा जन्म गवाया। भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते अंगिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते। गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब तेरी है गुरमुख वसे मन आए सदा रंग राते सच क्यों अपनी कृपा करे मिलाए। आपे करे कराए आपे इतना सुतिया दे जगाए आपे मेल मिलाएगा नानक शब्द समाए। श्री राज महला तीजा। सतगुरु तेरे है मन निर्मला पै पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया पेटिया जहर गंभीर। सच्ची संगत बैठना सच नाम मन तीर मन रे सतगुर केव निसंग सतगुर तेरे हर मन वसे लगे न मैल पतंग। रहाओ सच्चे शब्द पत उपजे सच्चे सच्चा नाओ जिन्नी हो मैं मार पछाणिया हो तिन बलिहारे जाओ। मन मुख सच न जाननी तिन ठौर न कतहु थाओ। सच खाना सच पहनना सच्चे ही विश्वास सदा सच्चा सलाहना सच्चे शब्द निवास सब आत्म राम।

तेजिक आए संसार जम दर्द दे मारिए फूक न सुने पुकार बिरसा जन्म गवाया मर जमे वारो वार एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर सरना सतगुर सच दिलाया सदा सत संजम रहना सतगुर सच्चा है बोहिसा सब दे पवजल तरना लख चौरासी फिर दे रहे दिन सतगुर मुक्त न होई पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवरना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे निज सच्ची कार करन किना निज कर वासा पाया सच्चे महल रन नानक भगत सुखिए सदा सच्चे नाम रचन श्री राज महला पंजवा जा को मुश्किल अत बने तोई कोई न दे लागू होए दुश्मना साफ दे पज फैले सगो पजे आसरा चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ साहेब नितान आका तान आए न जाई फिर सदा।

कुछ ना कुछ काला सोग निरत ना आवी चित तिस तैन सोग भोग सब किसी तुन अपना जिए न संकतरिया चित ना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस्तरिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यो ज्यो ओ वधाइए त्यों त्यों हर्ष्यों रंग दोहा श्रेया का खसम आप अवर

की अपरसा एक लूक ना देवे दरसा एक मन ही जाता काटना किन ही कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता सगल उकत उपावा त्याग शरण पावा नानक गुरचरण।

कर की जा। जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया, तेरा अंत न पाया सुरगु मत पयाल जियो।

फिर तंदै लाया वेखें कीता आपना कर कुदरत पासा टाल जियो प्रगट पहाड़ जापदा सब नावें प्रतापदा सतगुर बाज न पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर को बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नर मन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगते परम पुलाया आपो तुद खुआया प्रताप लगा दोहागनी पाग जिना के ना हो जियो दोहागनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वे सिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे ले मिलाए जियो हुक्म दिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागनी जिनसे नाल त्यार जियो जिना पाने का रस आया तिन विच्चों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विच्चों ए करन चुकाया दुर्मत का दुख कटिया पाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया पगतार रह समानिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नजर करे निस्तार जियो सतगुर मिले आ जानिए जित मिले नाम वखाणिए सतगुर बाज न पायो सब सच्ची कर्म कमाए जियो हों सतगुर वित्तों कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे आपनी आपे ले रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैग रखिया देकर मस्तक तार जियो सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब किस जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया कंठ लाए कह रखियो न लगे न तकी वाओ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छेड़ा फल पाया था पाप सा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सच्चो सच वर्तदा जिस पावे तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो गोपी ने गोआ लिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी पांडे साजिया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर क्यों चित लाया तिन दूजा पाव चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगियाईया मैं रात देह वडियाईया अनमंगिया दान देवना कहो नानक सच समाल जियो श्री राग महला पंजवा तै पाए मनाई कोई जियो सतगुर पुरख मिलाया तिस जेवड अवर न कोई जियो रहाओ गोसाई महिंदा इछड़ा अम अबे खावो मिछड़ा तैन पाई सब सजना तुद जेहा नाही कोई जियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सतका हल जो आया नाव बीजन लगा आसकर हर बोहल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिले इक पछाणदा दोया कागल चित न जानदा हर इक तै तारे लायो ने ज्यों पावे तिवें निभाए जियो तुसी पोगो पुंचो पाइयो गुर दीवान कवाए पहनाइयो हौ होआ माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो हौ आया सा मैं तिहंडिया पंज किरसान मुजेरे मेहंडिया कन कोई कद न हंगई नानक बुठा को

पाए जियो। सुन गल्लां गुर कह आया, नाम दान इस नाम दिड़ाया, सब मुक्त हो आसे सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चार जियो। सब सृष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो, थोक बजाए सब जिठिया, तुस आपे लयन छड़ाए जियो। हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, तै कोई नख सैर जान दा, सब सुखाली बुठिया, इहो हुआ हले मीरा जियो। किम किम अमृत वर्ष दा, बोलाया बोली खसम दा, बहुमान किया तुद उपरे, तू आपे पाई थाए जियो। तेरिया पगता पुख सद तेरिया, हर लोचा पूरन मेरिया, देहो दर्श सुख दात्या, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो। तुद जेवड़ अवर न पा लिया, तू दीप लोक पया लिया, तू थान सनम कर रव रहा, नानक पगता सच आधार जियो। हौ गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच दुमानड़ा, सब होई छिंज इकथिया, दे बैठा बेते आप जियो। वात वजन टमक तेरिया, मल लगते लेंदे तेरिया, नेते पंच जवान मैं, गुर थापी दिती कंड जियो। सब इकट्ठे होए आया, कर जासन वास वटाया, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। तू वरना चेहना बारा, हर दिसे हाजिर जाहरा, सुन सुन तुझे से आए दे, तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दया सेवड़ी, गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी, हौ बाहड़ छिंज ना नचू, नानक अवसर लद्दा पाल जियो।

कर पहला पहले पहरे रहन केवन जा रहा मित्रा हुकम पया दरवास उर्द तप अंतर करेवन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आ

दूजे पहरे रहन कहन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाइए वन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाइए प्राणी माप कह सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन पीतर तर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यों चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हर का नाम न चेते प्राणी विकल पया संग माया तन स्यों रता जोबन मता अहला जन्म गवाया कर्म से ती वापार ना कीतो कर्म ना कीतो मित कहो नानक तीजे पहरे प्राणी तन जोबन स्यों चित चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेत पेत चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दुआले खिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त होई जिस क्यों लाया।

धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री मुखमा पातशाही दसवीं।

जैसे बीस बार दर्शन साध किया का हूँ, जैसे बीस बार दर्शन साध किया का हूँ, कैसे पुण्य

ये पावन पवित्र वाणी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उचारी हुई अथवा गाई हुई गुरु कीर्तन के रूप में ग्रीनवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये शब्द गा रहे हैं।

साहेब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज पावन पवित्र शब्द उस संसार की एक मर्यादा का वर्णन करते हुए दस रहे हैं।